0: 罗体上了经济单位同的丁清图中年龙东产下进别三推行程体加着别体制。
1: 妈的就接把冰箱装的妈老冲上去的给你弟弟啊那冰箱的冰箱你妈不好得的啥我的妈了我的是给爸爸的冰的妈给他的给他的这种那个咋钱不挣的这家了妈没的这个家就觉得你妈的那个发射这个书卡萨卡了他从前不好送给他他那等个你都卡了手他你妈的就接不要再装的सवाल कांगा में तो तो रेसन ने दा सीजी फिंग के गति ना साल जान तो ने कोता ता जिस दो साल ने मैं तो इन से होते रो
0: गति तो मादी जो के बे बे मां छु रंग सो ल्यो दोंग की के के की देन जा सोंग यु ना बे ता छ सा थ्यू मां छो ना दी की देन बे छो आ के के छु यु